0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यूं ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो
2: जेस लेंसी गुए another one.